0: सात डबल रोल, उता चोर यता पुलिस। सानो छँदा सीता और गीता भन्ने हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ, उता निशा यता सुन्तली।
1: मलाई त सुन्तली जस्ता पनि चोर चोर लाग्न थाले है साथ।
0: साँच्ची अचेल काठमाडौँमा चोरको बिक्री किन कम भयो भनेको त कुरो यस्तो पो रहेछ। साँच्ची साहब, निशा चाहिँ कहाँ गायब भइ त।

0: सर मेरो बिएको कार्ड।
1: कंग्रेचुलेसन।
0: थ्याङ्क यू सर।
1: केटीको हो?
0: हाम्रै डिपार्टमेन्टको। सुन त नि हजुर, आउनुपर्छ नि, हामीलाई आशीर्वाद दिनु।
2: ओके।
0: हस् सर।
3: ट्रिगर मुताबिक भोलि हामी

थार हाथ मैले दिउला तिमी अघि बढ थाहै नदी झप्पै मेरो मनमा सरी छौ तिम्रा डोला डोला।

0: versatile singer Arjun Kausar.
1: अरे पुरानवा क्या रे भैया
2: अरे शादीवादी नहीं गाओ क्या
1: अरे लड़की मिला ना
2: लड़की नहीं मिली
1: अरे क्या
2: समझा
3: आई